सृष्टि का पहले मई थी भगत कोई थे नोधे सवैले सवै बुझा तिमी मेरे विभूति सृष्टि का पति फेर महा परलाय मई ग्रंथु भगत मुदी।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

आदमी का पना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर दा नारी ले प्रगति पथ को।